0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम्बा नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चय सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: मेलबर्न मध्याह्नको 12 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्द नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु.
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
1: सीधा कुरा कष्ट विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो.
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो.
1: राष्ट्रको शान किसान.
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स.

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
2: साइन चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 1 PM दिउँसोको 1 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
5: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलू एफएम सोलू एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: 才华就你所努爱天空大战
1: Solu FM 101.2 MHz
2: Ujjwal Bhavishya ko lagi hamro abhiyan
3: Sound check Solu FM is studio time
4: It's 2 PM We support the radio
3: Sound check Solu FM is studio time
4: It's 2 PM We support the radio
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: धर्मा छायो हजुरी सोलु एफएम को
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: फाइव पीएम साँझ को पांच बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: TWR नेपाल नेसुर जो मार्गदर्शन रेडियोला प्रसिद्धिले जय मसी तयान्ती निजी क्योंग मोगोई दाक्ती शिंकिर मुतां दुप्पी परलासां निजी के त्यांदो क्ल्यामो केनी देनी ल्यामो केनी द्वाबीन
1: नासे लुंगसांग जाती वाला तीस दिने तमा जेमिसे हारिंगा लुंगसांग जाती परला उन्जो के लिए नियमती सिगंत्रिप की थोकला बीमार का तसन रेडियो ला वनेप सुन नासे हारिंगी लिए नियमती उन्जो की क्यूज मोपर की कोर लाइन तमा तंदा धक्की की तो ही उन्जो की मोपरला धक्की की नासन तो ही जरूर परला नियाजी दिखना दिशा की बोमला धक्की की कौन जो पपला धक्की तेरे मोपर की रो तमा धक्की लाइन इंजे जरूर तां धक्की मुलासा धक्की खरे तुम भी जोगुला नो उन्जो की दोगा जाने कोई की मुलाता मुझे मार जाने तमा कोई की तेरे बो तामला लाओ इंसरो तामला सा नासम तुमको जीवे तमा धक्की से हमने इंजे तो ये नल्ले चीनी जोगुप सिनां धक्की ये खोला धक्की खरे ये दिन तमा नासम दिवातां धक्की तेरी जुगला लूला सोहतंग ने मोपला कौन जगी चिबला ने बुबला ना संतुंगो बे आरिंग दागु चो कौन जगी मोपला सुन नंगो सितांग जी कोला ताम चिलो छोली वाय इकी दुक्षिणी सिवे छराजी मिंचंग जो नंगशी समझो ये कौन जगी मोपले दुकाने थल निजी ये न्याय जवाजना जो मतो पापा छराजी मिंचंग जो नंगशी चंगे जो नंगशी सिरो चंगे कांग जीवे दागु दी ताम चिलो बला ऊपर जिसान तय मुंडो बे फिर तया डाको लड़ाई मिलाची के मिंजी को लना सतोंगो जो को लड़ी लड़ाई मिंजीवा समान नासम तिवा समस्या मन दोषें की भूमि ताम तिवा समस्या मन माहरो ताम दो खुन निजीवे समझी जोटा के नंगला दुगो मितो आएगी समतिवा चीवे निजी मिंज जो मुझे जाने नम भूमि से मन माहरो ताम तिवा संजीवे नुंसे न्याजी चुरुंगला मिंजोरा नार जो भीषुसिसिं मदर ट्रेसा संजेस खान एडोम हिटलर जोन सेबेस्टिन बाग येसु मिंसिलु के पड़ला खराजी दी मितुई कोला भूमि तमा दुगो नासम तिवा तां सिंगे ताम तिवा जीवे नेमो वे कौन से की मिंजी भूमि नासम तिवा तां भूमि ताम दो खुन जीवे तमा कोई की मिंजी सिंगे ताम दो सिम ना मांगलो तमा जो मुतो ताम इंसिनी निंजीवे कोई की मिंगा जो जीसा तमा को ना ताऊं तमा चिंजी तो अदरा मिं तमा लोंसा निंजे ये गोदी ये तुप्तां ये गोदी में ये दिखी थोवासां नानी जो जीस लो थोंसां वे तिलस्त्री कौन जो पबीजी पर ऐसे वो यीशु क्रिस्ट लाम जमुने की रोक ने मत आम वो कुप की थोला बिना सुंग इकी चीज़ लेज़ धक भी दिखवाते वाला ऐसे अन्य जीवे शेप ने से डालो तमा तमा कोई जी मिला नमसा नाम हो रो निजीने जीवे तमा कोई जी मिंसुंगीन जितु क्या ने रुपी सिरो तम लाम निम्न जितु लागा जीसा तमा दितेरे तम यीशु क्रिस्ट की मिला जीवे तमा दिच्छु कैसा लूंग तेवा तेवा म्यांगे जे यीशु क्रिस्ट की मिला जीवे कोई जी मिंगी चंदोगे कौन जो की होके सिरो तम जीवे तू क्या ने नमसा चरो शेप ने से डाला जी को नोसुंग सिसिन लोंग चलाजे दिखवाते वाला शाओ गो नोसुंग सिसिन तमा लोंसा चरो गुप्तमातं नमसं नामोलु निजी की तोकला ये जो को नोसुंग सिसिन चरो ये सुते लोग ने जीवे चिलसिली को जोगे ये जंग नांगवाए तमा कोई ये मिलना रांग दुकेरा जंग नांगवाए तो तं ये सुके मिजे चो खर्शन हो तमा निवा कला चो को जोगे सुनंगे ये की चो को जो खराजी कौन जगे मीन दुरा मापंसा चिलसिली कोई जी मिन्ना रांगते पिरसुला संग जो कौन जगे लिया मीन से सुंग मनावे जो कौन जगे मीन जे जो खक्षे वस्तु तमना ना समतोगा कहाँ इंसान डाक बीजे जो ही कौन जगे मोपने से लागा जिसन न कौन जगे बीन नंगो भूमि का तो खोने उम्मी हुए चिलसिली दिक्कत हुआ जो ही कौन जगे मोपर की मुला दिंगी हुए तमा डाक बीजे कहाँ जी हो जीवे तमा कहाँ दी की मुंगो हुए तमा डाक बीजे कौन जगे चुक जाने मोपर जाओ कौन जगे नो जी शुरू ताम दे पड़ला बंगे मुंगो को ताम दिवस हुए नमसा डाक बीजे हो तुम्हारा कौन जो की नासम दूजी तो चली हुआ सिसिन धाकुदी की कोड़ा चो कौन जो की मुला ताम की जानी जीवे तमती पड़ा धाकु चो कौन जो ला गालों मुझ चले जीवे तमती धाकु लेता ला तमती धाकु कौन जो मुला तम ये चाव जीवे कौन जो की मिंदी चंगे वाए ताय मिंदी कौन जो ला नारा तो मुझे नीजी कौन जो ला थोड़ा तो मुझे तमा खोला भोजी मुझे तमा लोग 회지 자능을 나가라. 진 복무드웨. 담아 크리스천 띠위지 권적지. 민 담아 회지 자능고 나가디 인나시 보지웨. 담아 동일여우 디디제. 담아 후두나 자니. 담아 떨어서 쏘벌라. 담아 니 이자일라 벨린하니웨. 나라 티랑 권적지. 이지 영나수시신. 알라니다 갈지다니지. 아가스키 이자일라. 도합지 살라 보마지구제시네. 삼지우노에. 나라 코비지 지사네진. 사세 비무갈. 담아로냐지 비유 브럽지 니맘 디스먼 브럽스니 시게네 비누에 담아 담아냐물라 브럽스니 지유이 비디오성웨 기기냐 경라 동특기웨 농사처럼 쨍에 농발라 레부블라 노지 담아 담아 쪼우거제 예수때 우민시니 기다스리 차등대인시니 시가소스신 기네 경라 말람지 톡라 기 사세 세야담아 사세 나루도 나가자낭송 농사처럼 쨍에 농발라 니에굴라 브럽스니 노지웨 Tamachara Moram was all no new Osum Susan, Dogo Jesu Drop Dasalam, Hip Tama, Tamatea Dutanga Dasalam, Hapta Missian, Yambalemu Chukan Samen, Machurunga Dis Hokalam, Zumna Wajis in Noen, Nusan Diagash, Tinita Kazidangila Jiwe, Tukane in Sinam, Churunga Disim Osum Susan, Tamanakwatam, Hako Bosum Susan, Nyajiponda Malapon Kisam, Tamana Ikisan Tongam. 저희들의 사슬에 걸린 하트기동 다만이 다문문이 어디 뒤지 골라 나성통일어에 뒤지 우동랑 권적이 민지 예만전의 조국당 권적이 민지 장례들어올라 시조 장나오 다만인바 짐나 바보 권적이 민 유블라디 여호바나오 여우디 뒤롱 예도나이시로 삼마치로 논이 장나오 너무 권적이 쨍의 민지 여호바나오 다마티기 테너디딘 나인 디딩아라인 여우디 뒤디민나 이죽네스 딜라포니 예도나이시니 장나오 Sila, Sila Sintiwa, Ponyagi Mindi Yokublam, Tamaswa and the Gundo Yino, Tamatua Dimila Tugran Limutang, Tamaturan Dukjani Sulu Maisne, Nojino, Diteri Mindi, Zotim Zosinam, Tamadikito Ponyagi Mulam, Tratam Yokublam, Kolumne Junisinam, Yamutama Manglamoe, Tamada Ponyagi Mina, Antepjani, Mulungu Kakse Giving, Tamadaki Ponyagi Min, Tugran Limu Maisu Tendal Giving. Tamalamaraway, Sobalachurum, Tugarajani Kanachila Lagachiwe, Tamati Tugarachao Yino, Tamati Day, Ransango Medimino Susin, Tikichurma Daza Kimutuwe, Tamati Natamutabje, Konjokemin, Hokum Lagatualam, Mother Shuni Jiwe, Tamacharajitilam, Jangbusika Minu Insine, Churma Daza Kimutuki Toklam, Natural Jikiwe, Ditam Kide, Natural Mila, Nyala Lachalu Zeki, Milakwa Zotumwe, Tamazinoki and then, Sessunguji and then, Tamazinozov, Lung Tamadoreji Tam Tiwasang, Wanjaki Min Turang, Lao Tamin, Kazinozov Lung Tamatewa, Tigi Zumuninkam, Yamapan Sok Zikuptewa, Tony was in Churumla, Wanjaki Taka Nesur, Tam Lubdua in, Shalaji Tabuki Tokla, Chigran Tambu Pineway, Tamatizi Christian Tiri Pining, Shalaki Wanjaki Sumal Hatuki, Tamatiki Tazan Hoksum Giving, Tamate Abuminozov Jacob Joe. Kilobu Bumane Jun, Joni Jangwang, Tama Hutra Yesuki Talmalam, Christian Tula Zinozov, Lung Tematiwam, Marayan Sinisini, Siga Bewang, Marayan Sinandewani, Zabu Korona Konjaki Minam, Kanket Jani Labni Telfuki Wing, Ari Sung Nindublam, Tulu Zamulin Kangi, Niti Kasarumbu, Tam the Kayan Sisin, Yuji Koraji Chow, Bikuji Korlam, Tulu Nangis Nitoji Wing, Tama TJ, Yamakan Nasamatano, Tamalo Chopala, Yesiki Sun Yesiki Muladini, Junin Nanguin, Sundi Kwanjaki Suin, Kila Tabubla Tama, Kila Semla Jokubla, Tamadagui Tukasana, Dagui Nyajisini, Nasam Tungo Jirin, Tamadagusan Ditala Potubo Jirin, Tamadagu Chopala Christian Jirin, Tamadagui Kirski, Senga Semla Akubo Jirin, Tamadagui Kweki Daja Tama, Sem Tengaji Laka, Dagui Mizilam, Sadin Tubo Jirin, Tama Dagwiji Tangdang, Nagasan Dagwiji, Niyemiji Parlam, Nema Jani Sadhu Lagachibu Jiwen, Dagwila Tama Yesuji, Ninasu Rokwisini, Dagwiji Moajibu Jiwen, Tama Dagwiji, Tuka Milati, Konjaki Sun Sija Binsin, Tingi Nyengi Deji, Ningi Nesini, Ila Dagwiji Nasam Tumbo Jiwen, Tama Dagwiji, Sijane Midu, 번역이 성대 뒤에 내마자니 니인대지 마인대스니 이런 하블라가 이런 자세 각세와인 강뒤지 강지로와 수육디 닭부지 하둔 고지웨인 강뒤지 하라 무서우자니 이런 나가 지지웨 농뒤지 예수남 가미주 나가민 정말 닭부 강자스남 예수께 닭부를 인제지웨인 예수께 닭부라 닭부지 법어매미지도가에 과신은 인제지않는거인 북한의 교수한테웨 권력의 민라쟁에 노지웨인 담아디 따르당기 된다고 디디 인제 오 대화전나 조든 예뻐봐 사람 인생의 중심 예마담라 스루나 스진 조유 권조 니만 결하기민 쟁의 잡라 로잉와에 니래 딜라 쟁의 조금라 단다 로잉와에 니래 기딜라 멸악관노니 인물 기울라가 니래 미딜라 남상미기 니게 다살라 니랑 결하기 땀들은 기린 농생 결하기 니랑 들이라 동지 장난구리 담아 미디기 권적지 닭고 때리라 동지 깨안난구리 시룩당 담아 코이기 숭고 숭년은 노지웨 담아 뒤기 바바 레마자니 니권적이 숭인시니 아코데 사세 레마타민 사세 아니기 권적이 숭데 나 도데라라 조금나 농산다고 다음고 샥라 진유 농권적이 숭 니누라가 기둥나 다시 들에 내메세

0: ব্যাতিওয়ালা দি মার্গদর্শন রেডিও নিয়ে চুকই নসুম নালা মুয়াওয়ে ড্যাতি উই মলাম থোপনাং ওচু ড্যাতিওয়ালা আরো উরতম শিরুপ নসুম দাকু দি রসলা ছেতু পিউই শেউই ছোপা মার্গদর্শন রেডিও TWR নেপাল GPO বক্স নম্বর 8975 EPC বক্স নম্বর 2561 কাঠমান্ডু নেপাল ফোন নম্বর 01559103 মোবাইল নম্বর 9813300690 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 9813300690 লংসং দাকুদি দশলা ছেথুপনো মাঠেওয়া শেখলা তৈরিলা তশিবিলি জয় মসে
1: নমস্তে ডাক্তার স্যার।
2: নমস্তে, বসুন না, বলুন তো কি হো?
1: হেনস না ডাক্তার স্যার, মেরো বচ্চা রাতে রামসঙ্গ নিদাউন পনি সক্তেন, বেলা বেলামা উঠছ ডরাউছ টাউকো দুখ্যো ভন্ছ, কি গর্নি হোলা?
2: ইয়া ইয়া উভ্যাউনুস একটুকি তোল হেরো। अनि खाना कति हो खान्छ नि?
1: खाना त खान्छ, तर फोन या आइप्याड दिनुपर्छ, नत्र खानै मान्दैन।
2: हेर्नुहोस्, अहिलेको समस्या नै यही हो, बालबालिकालाई फोन या आइप्याड दिएर खाना खुवाउँदा उनीहरूले खानाको स्वाद नै थाहा पाउँदैनन्, यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले त एक वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई स्क्रिन देखाउनु हुँदैन भनेको छ। दुईदेखि चार वर्षका बालबालिकालाई दैनिक एक घण्टा भन्दा बढी स्क्रिन देखाउँदा स्वास्थ्यमा असर पुग्छ भनेको छ।
1: ओहो, त्यो त थाहै भएन नि डाक्टर साहब।
2: स्क्रिनकै कारण उसलाई निन्द्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, तौल बढ्ने भएको, टाउको दुख्ने कारण पनि यही नै हो। यसले पछि माइग्रेन हुने जोखिम रहन्छ, उनीहरूको सामाजिक रूपमा हासिल गर्ने ज्ञान सिपका साथै शारीरिक सृजनात्मक विकासमा समेत अवरोध पुग्न सक्छ।
1: ओहो, फोनले त बच्चा बाठो हुन्छ भनेको त होइन रहेछ है डाक्टर साहब?
2: हो नि, बालबालिकाको तीन वर्षसम्मको उमेर भनेको अरूले गरेको कुराकानी सुन्ने, बोल्न सुरु गर्ने, सोच्ने, योजना बनाउन सिक्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, अनुहारको भाव पढ्ने र काम सिक्ने बेला हो। मोबाइलको अधिक प्रयोगले यस्ता कुरामा असर पार्छ।
3: त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई स्मार्टफोन, ट्याब र टेलिभिजनको अमलबाट जोगाउनु।
4: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
5: वन जंगल को छोड़ा घर आना।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Science. Solar FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start to call 7 budget.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू